0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा।
2: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, वैटिकन द्वितीय महासभा सैक्रोसैंक्टम कॉन्सिलियम का छठवां अध्याय धर्म विधि के पवित्र संगीत को समर्पित है। दस्तावेज कहता है, वैश्विक कलीसिया में संगीत की परंपरा अपने में एक अमूल्य निधि है, यहाँ तक कि अन्य कलाओं से भी बढ़कर। इस ख्याति का मुख्य कारण यह है कि जैसे पवित्र गीत शब्दों में पिरोए जाते, यह समारोही धर्म विधि का अंतरंग भाग बनता है। अतः पवित्र संगीत को धर्म विधि कार्यों में उतना ही पवित्र माना जाना चाहिए जितना वह पूजा पाठ से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह प्रार्थना को आनंद से भरता, चित्त में एकता उत्पन्न करता या पवित्र संस्कारों को अधिक समारोही बनाता हो। लेकिन कलीसिया सच्ची कला को स्वीकृति प्रदान करती है जिनमें जरूरी गुण शामिल हों, तथा वह उन्हें दिव्य आराधना में शामिल करती है। संत पापा ने कहा कि यहाँ हम धर्म सभा की आधारभूत शिक्षा को पाते हैं जो धर्म विधि के अनुष्ठान में संगीत को सुदृढ़ता और गहराई प्रदान करती है, जिसकी चर्चा पहले ही संत पियूस दसवें ने अपने मोन्तु प्रोप्रियो, स्वतः से प्रेरित इंटर सोलिची तूदिनस में किया है। संगीत वास्तव में धर्म विधि क्रियाकलापों का एक भाग है, ना कि समारोह का एक श्रृंगार मात्र ही। धर्म विधि में गायन और वाद्य यंत्रों की धुन का अर्थ प्रार्थना करना है, अपने हृदय को अपने भाई बहनों और ईश्वर के संग एक लय में करना, जहां हम अपने को समारोह के रहस्य में सक्रिय रूप से सहभागी करते हैं। विशेष रूप से संगीत प्रार्थना के प्रभावकारी आयाम को व्यक्त करता है। संत अगुस्टिन कहते हैं, कंतारे आमातीस एस्त, अर्थात गान उससे जुड़ा है जो प्रेम करते हैं। यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे हृदय को ईश्वर से मिली कृपाओं के लिए खोलने और उसके अनुरूप बनने को मदद करता है। संत पापा लियो ने कहा,
2: Il canto inoltre favorisce la comunione.
1: गायन हममें एकता पोषित करता है, यह हमारे हृदयों को जोड़ता है जहां हम अपनी विभिन्नताओं से ऊपर उठते और हर एक को एक स्वर में ईश्वर की महिमा करने हेतु अग्रसर करते हैं। इस भांति यह कलीसिया को ज्योतिर्मय करती है, एकता की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति जो उसके स्वभाव का अंग है। कुछ आवश्यकताओं की उत्पत्ति गहरे ईश शास्त्रीय गान की महत्वपूर्णता से होती है जो धर्म विधि के क्रियाकलापों का एक अभिन्न अंग है। सर्वप्रथम इसे चाहिए कि वह हर स्तर के जवाब स्वरूप धार्मिक अनुष्ठान के अनुकूल हो, किसी फैशन या संगीतकार की विशेष संवेदनाओं से परे। इसका स्वरूप विशेषकर इसका स्वर संगीत अपने में भद्र और सरल होनी चाहिए। संगीत का स्तर उच्च और सहज जो क्रियान्वयन के योग्य, विशेषकर जब उसे पूरे समुदाय के द्वारा गाया जाना है। यही कारण है, संत पापा ने कहा, कि धर्म सभा इस बात पर जोर देती है कि इसके पद सुयोग्य हों, गहरे और साथ ही साथ सहज ही समझ के योग्य, जो धर्म ग्रंथ, धर्म विधि की पुस्तकें और कलिसियाई आध्यात्मिक परंपरा से प्रेरित हो। हमें इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे प्राचीन सिद्धांत लेक्स ओरेंदी और लेक्स क्रेडेंदी के आयाम अर्थात प्रार्थना के नियम, जो विश्वास के नियम हैं, अपने में सजीव रहें और निरंतर उनका विकास हो। सैक्रोसैंक्टम कॉन्सिलियम विश्वासियों के सक्रिय सहभागिता की विषय वस्तु पर विशेष ध्यान देती है। हमें इस तथ्य को समझने की जरूरत है, उस विशेष रहस्य के आधार पर जिसका अनुष्ठान किया जा रहा है और दैनिक जीवन में उसका संबंध, एक निरंतर परिवर्तन के मनोभाव में जो विश्वासियों के जीवन को चिन्हित करता है, एक ठोस माध्यम जिसके द्वारा धर्म ग्रंथ के संगीत की विशेष भूमिका प्राप्त की जाती है। धर्म सिद्धांत इसका एक स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत करता है, उद्घोषणाओं, प्रत्युत्र, स्तोत्र, भजनों और गायनों के द्वारा लोग सहभागी होने हेतु प्रोत्साहित होते हैं और शांति में आराधना पोषित होती है। यह हर व्यक्ति, पुरोहित या विश्वासी को उन सारे कार्य के लिए प्रेरित करता हो जो उसकी प्रकृति का अंग और धर्म विधि के सिद्धांतों का भाग हो। संत पापा लियो ने कहा कि धर्म सभा इस भांति समारोह के लिए धार्मिक संगीत की अन्य शैलियों का परित्याग किए बिना ग्रेगोरियन गान को अत्यधिक महत्व देती है। यहाँ हम पाइप ऑर्गन पर दिए जाने वाले खास ध्यान को भी पाते हैं, जबकि अन्य दूसरे वाद्य यंत्रों की भी अनुमति है, इस शर्त पर कि वे यंत्र सुयोग्य हों या अपने में धार्मिक कार्यों की उपयोगिता हेतु सुव्यवस्थित किए जाते हों, जो ईश मंदिर के अनुरूप हों और जो सही अर्थ में विश्वासियों के लिए आध्यात्मिक लाभ प्रद हो। नवनीकरण की एक विषय वस्तु धर्म सभा के निकट है, जिसे हम संस्कृतिकरण स्वरूप पाते हैं, जो पवित्र संगीत को अपने में समाहित करता है। इस संदर्भ में विशेषकर विभिन्न संस्कृतियों में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। धर्म सभा उनके महत्वपूर्णता पर जोर देते हुए उन पर गंभीरता से विचार करने का आह्वान करती है, जैसे कि वे लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन का अंग बनते हैं। अतः वहीं दूसरी ओर एक धार्मिक मनोभावना हर किसी के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर जहाँ तक हो सके यह क्रियान्वयन के योग्य हो। हमें हर तरह से यह कोशिश करने की आवश्यकता है कि लोगों के पारंपरिक संगीत विद्यालयों और धर्म विधि दोनों क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाते हों। संत पापा लियो ने कहा कि धार्मिक संदर्भ में स्कोला कांतोरूम को एक खास भूमिका दी गई है। धर्म सभा प्रेरिताई हेतु वाद्य यंत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु निर्देश देती है, जिसमें विभिन्न संगीतों का उपयोग किया जाता हो और साथ ही विश्वासियों द्वारा गायन में सक्रिय सहभागिता ली जाती हो। यही कारण है कि संगीतज्ञ से इस बात की मांग की जाती है कि वह कलिसियाई संगीत का ज्ञान रखता हो और उस विरासत को कायम रखता हो जो उसे धर्म विधि के लिए नए गीतों को लिखने में प्रेरणा प्रदान करता हो, जबकि वह समकालीन संवेदनशीलता और विभिन्न परंपराओं का सम्मान करता हो, जिससे फैशन की कुरूपता से आराधना शुद्ध की जाती हो, अरुचिकर अभिव्यक्तियों, अप्रेरणादायक संगीतों के पदों से, जो समारोह हेतु उचित नहीं है, मुक्त किया जा सके, जिससे धार्मिक संरचनाओं को गरिमा और उत्कृष्टता की गारंटी प्राप्त हो। Sant Papa Leo ne ha.
2: Per tutte queste ragioni i padri conciliari raccomandano di promuovere la formazione e la pratica della musica sacra.
1: Inhi karanon se dham sabha ke dharmacharyon ne is baat ko protsahit kiya ki nav shishyalayon, laghu gurukulon aur dharm sanghyon ke prashikshanalayon mein tatha kristiya sansthanon aur vidyalayon mein dharm vidhi ke geeton ka abhyas aur prashikshan diya jaye aur is baat ka dhyan rakha jaye ki sangeetagyon aur gayakon ka dharm vidhi ke sambandh mein uchit prashikshan diya jata ho। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, धर्म सभा के आचार्यों ने धर्म विधि के गीतों के संबंध में एक वृहद सम्मान था जो कलीसियाई एकता की एक निशानी थी। हम इस भांति अंतियोख के संत इग्नासियुस के सुंदर वचनों से इस धर्म शिक्षा माला की समाप्ति कर सकते हैं। आप में हर कोई एक गायक दल बने जिससे सहमति और सामंजस्य पूर्ण और एकता में ईश्वरीय स्वर को धारण कर आप यीशु ख्रिस्त के संग एक स्वर में पिता का गुण गान कर सकें, जिससे वे आपको सुन सकें और आपके अच्छे कार्यों में यह पहचान सकें कि आप उनके पुत्र के सदस्य हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवें ने हंगरी में हुई दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया है। मरने वालों को ईश्वर की दया को सपोर्ट किया और ईश्वर से उनके परिवारों को दिलासा प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित ताज संदेश में पोप ने हंगरी में हुए एक दुखद सड़क हादसे के लिए दुख व्यक्त किया, जिसमें पोलिश तीर्थयात्रियों का एक दल मेजोगोरे से लौट रहा था। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ताज संदेश को उन धर्म प्रांतों के धर्माध्यक्षों को भेजा गया जहाँ से तीर्थयात्री आए थे। पोप ने इस खतरनाक घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त की है। पोप ने कहा, मैं उन्हें ईश्वर की दया को सपोर्ट करता हूँ और ईश्वर से उनके परिवारों को सांत्वना प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अंत में संत पापा ने सभी को चेस्तो कुआ की धन्या कुमारी मरियम को सपोर्ट किया और उन्हें अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया। दुर्घटना 15 और 16 अगस्त की रात को M3 मार्ग पर बुडापेस्ट से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में हुआ। बताया जा रहा है कि 59 लोगों को ले जा रही बस सड़क से उतरकर एक खाई में पलट गई। पोलिश और हंगेरियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने भी अपनी संवेदना जताई है और पीड़ितों एवं घायलों के लिए प्रार्थना करने का भरोसा दिया है। वियतनाम में लावांग की माता मरियम के सम्मान में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा चिंतन एवं प्रार्थना के साथ संपन्न हुई, जिसकी विषय वस्तु थी मरियम सुसमाचार के संदेश वाहक। पेरिस विदेशी मिशन के वियतनामी पुरोहित फादर लैंड्री वारेने ने कहा, लावांग वियतनाम में लूर्द के तीर्थस्थल जैसा है। उन्होंने उन तीर्थ यात्राओं का जिक्र किया जो स्वर्गरोहण की खासियत को दिखाती हैं। 13 से 15 अगस्त तक वियतनाम के हुए महाधर्म प्रांत में लावांग की माता मरियम के राष्ट्रीय तीर्थस्थल में मरियम के पास मां के घर जाने की विषय वस्तु पर एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया था ताकि सांत्वना पा सकें और सच्चे शिष्य एवं मिशनरी बनना सीख सकें। फादर लैंड्री वारेने ने कहा, यह तीर्थस्थल वियतनामी लोगों की आस्था के केंद्र में है, जो खास तौर पर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कारणों से लावांग की माता मरियम के प्रति समर्पित है। लावांग वियतनाम में लूर्द के तीर्थस्थल जैसा है। उन्होंने उन बड़े तीर्थस्थलों का जिक्र किया जो धन्या कुमारी मरियम के स्वर्गरोहण की खासियत को दिखाती है। तीर्थयात्री उत्तरी, दक्षिणी और मध्य वियतनाम के साथ साथ विदेशों में वियतनामी समुदायों से भी आए थे। स्थानीय कलीसिया के अनुमान अनुसार इस साल तीर्थयात्रियों की संख्या 2 लाख से ज्यादा थी। फादर फ्रांसिस ने लोगों के विश्वास पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हर कोई उस बात पर विश्वास करता है जो मरियम ने 1789 में हमारे पूर्वजों से कही थी कि वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगी। हम मानते हैं कि हमारी माँ देश के लिए, वियतनाम की कलीसिया के लिए और शांति के लिए हमारी प्रार्थनाएं सुनती हैं। वे बताते हैं कि उनकी भक्ति ख्रिस्त त्याग, वापसी का संस्कार, क्रूस रास्ता और करुणा की पौत्र घड़ी में भाग लेने जैसे तरीकों से व्यक्त होती है। वे कहते हैं, विश्वासों को लगता है कि वे माँ के दिल में हैं, उनके आंचल तले मरियम उनकी शरण है। इसमें एक मिशनरी पहलू भी है। वे कहते हैं कि लोग मरियम के आदर्शों का अनुसरण करते हुए प्रभु और उनके प्यार को दूसरों तक पहुंचाना सीखते हैं। लावांग की माता मरियम के प्रति भक्ति की शुरुआत 1798 में हुई, जब वियतनाम के इतिहास में ख्रिस्तियों पर अत्याचार का सबसे बुरा दौर था। सम्राट कान थिंग ने गिरजाघरों को नष्ट करने और कैथलिकों को सताने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्हें विदेशी धर्म के अनुयायी माना जाता था। कई लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा और उन्होंने लावांग के घने जंगल में शरण ली, जहां उन्होंने भूख, बीमारी और ठंड झेली और उन्हें डर था कि उन्हें ढूंढ कर मार दिया जाएगा। शरणार्थी हर शाम एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते, आग जलाते और रोजरी माला विनती करते थे। रात की इन्हीं प्रार्थनाओं के दौरान एक दिन रोशनी में लिपटी एक महिला दिखाई दी, जो पारंपरिक वियतनामी कपड़े पहने हुए थी और उनके साथ 2 स्वर्गदूत भी थे। उनका संदेश सबसे ज्यादा दिलासा देने वाला था, मेरे बच्चों दृढ़ बनो और विश्वास रखो, मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। यह खास बात है कि मरियम बिल्कुल एक वियतनामी महिला की मुखाकृति और कपड़ों में दिखाई दी।
उनकी इस छवि को स्थानीय कलीसिया ने खासकर 20वीं सदी के अंत में बड़े पैमाने पर फैलाया। विश्वास और पहचान के बीच एक गहरा संबंध दिखाती है। सदियों बाद आज धर्माध्यक्ष इस बात को मानते हैं कि जब कैथोलिकों पर विदेशी धर्म से जुड़े होने का आरोप लगाया गया था, लावांग इस बात की गवाही देती हैं कि पूरी तरह कैथोलिक और साथ ही पूरी तरह वियतनामी होना भी संभव है। आज भी तीर्थयात्री इस याद को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। वे बरगद के पेड़ों की छांव में टेंट में सोते हैं, रोजरी माला विनती करते और उत्सव के दौरान नाटकों के जरिए 1798 के दिव्य दर्शन की कहानी सुनाते हैं। पोप लियो 14वें ने सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर में एसोसिएट प्रोफेसर कैरन रोड्रिगस को वैटिकन के समग्र मानव विकास विभाग में सलाहकार के रूप में चुना है। नियुक्ति की घोषणा 18 अगस्त को हुई। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित वैटिकन विभाग के सलाहकार के रूप में कैरन रोड्रिगस के साथ कई अन्य सदस्यों की नियुक्ति हुई है। जैसा कि प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम में कहा गया है, रोमी परमाध्यक्ष कार्यालय के विभागों में सलाहकारों की नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए की जाती है। वे खासकर अध्ययन की जरूरत वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए उपयोगी राय एवं

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा लियो चौदवे ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, वैटिकन द्वितीय महासभा सैक्रोसैंक्टम कॉन्सिलियम का 6वां अध्याय धर्म विधि के पवित्र संगीत को समर्पित है। दस्तावेज कहता है, वैश्विक कलीसिया में संगीत की परंपरा अपने में एक अमूल्य निधि है, यहाँ तक कि अन्य कलाओं से भी बढ़कर। इस ख्याति का मुख्य कारण यह है कि जैसे पवित्र गीत शब्दों में पिरोए जाते, यह समारोही धर्म विधि का अंतरंग भाग बनता है। अतः पवित्र संगीत को धर्म विधि कार्यों में उतना ही पवित्र माना जाना चाहिए जितना वह पूजा पाठ से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह प्रार्थना को आनंद से भरता, चित्त में एकता उत्पन्न करता या पवित्र संस्कारों को अधिक समारोही बनाता हो। लेकिन कलीसिया सच्ची कला को स्वीकृति प्रदान करती है जिनमें जरूरी गुण शामिल हों, तथा वह उन्हें दिव्य आराधना में शामिल करती है। संत पापा ने कहा कि यहाँ हम धर्म सभा की आधारभूत शिक्षा को पाते हैं जो धर्म विधि के अनुष्ठान में संगीत को सुदृढ़ता और गहराई प्रदान करती है, जिसकी चर्चा पहले ही संत पीयूष दसवें ने अपने मोन्तु प्रोप्रियो स्वतः से प्रेरित इंटर सोलिची तूदिनस में किया है। संगीत वास्तव में धर्म विधि क्रियाकलापों का एक भाग है, न कि समारोह का एक श्रृंगार मात्र ही। धर्म विधि में गायन और वाद्य यंत्रों की धुन का अर्थ प्रार्थना करना है, अपने हृदय को अपने भाई बहनों और ईश्वर के संग एक लय में करना, जहां हम अपने को समारोह के रहस्य में सक्रिय रूप से सहभागी करते हैं। विशेष रूप से संगीत प्रार्थना के प्रभावकारी आयाम को व्यक्त करता है। संत अगुस्टिन कहते हैं, कंतारे आमातीस एस्त, अर्थात गान उससे जुड़ा है जो प्रेम करते हैं। यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे हृदय को ईश्वर से मिली कृपाओं के लिए खोलने और उसके अनुरूप बनने को मदद करता है। संत पापा लियो ने कहा,
2: Il canto inoltre favorisce la comunione.
1: गायन हम में एकता पोषित करता है, यह हमारे हृदयों को जोड़ता है जहां हम अपनी विभिन्नताओं से ऊपर उठते और हर एक को एक स्वर में ईश्वर की महिमा करने हेतु अग्रसर करते हैं। इस भांति यह कलीसिया को ज्योतिर्मय करती है, एकता की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति जो उसके स्वभाव का अंग है। कुछ आवश्यकताओं की उत्पत्ति गहरे ईश शास्त्रीय गान की महत्वपूर्णता से होती है जो धर्म विधि के क्रियाकलापों का एक अभिन्न अंग है। सर्वप्रथम इसे चाहिए कि वह हर स्तर के जवाब स्वरूप धार्मिक अनुष्ठान के अनुकूल हो, किसी फैशन या संगीतकार की विशेष संवेदनाओं से परे। इसका स्वरूप विशेषकर इसका स्वर संगीत अपने में भद्र और सरल होनी चाहिए। संगीत का स्तर उच्च और सहज जो क्रियान्वयन के योग्य, विशेषकर जब उसे पूरे समुदाय के द्वारा गाया जाना है। यही कारण है, संत पापा ने कहा, कि धर्म सभा इस बात पर जोर देती है कि इसके पद सुयोग्य हों, गहरे और साथ ही साथ सहज ही समझ के योग्य, जो धर्म ग्रंथ, धर्म विधि की पुस्तकें और कलिसियाई आध्यात्मिक परंपरा से प्रेरित हो। हमें इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे प्राचीन सिद्धांत लेक्स ओरेंडी और लेक्स क्रेडेंडी के आयाम अर्थात प्रार्थना के नियम, जो विश्वास के नियम हैं, अपने में सजीव रहें और निरंतर उनका विकास हो। सैक्रोसैंक्टम कॉन्सिलियम विश्वासियों के सक्रिय सहभागिता की विषय वस्तु पर विशेष ध्यान देती है। हमें इस तथ्य को समझने की जरूरत है, उस विशेष रहस्य के आधार पर जिसका अनुष्ठान किया जा रहा है और दैनिक जीवन में उसका संबंध, एक निरंतर परिवर्तन के मनोभाव में जो विश्वासियों के जीवन को चिन्हित करता है, एक ठोस माध्यम जिसके द्वारा धर्म ग्रंथ के संगीत की विशेष भूमिका प्राप्त की जाती है। धर्म सिद्धांत इसका एक स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत करता है, उद्घोषणाओं, प्रत्युत्तर, स्तोत्र, भजनों और गायनों के द्वारा लोग सहभागी होने हेतु प्रोत्साहित होते हैं और शांति में आराधना पोषित होती है। यह हर व्यक्ति, पुरोहित या विश्वासी को उन सारे कार्य के लिए प्रेरित करता हो जो उसकी प्रकृति का अंग और धर्म विधि के सिद्धांतों का भाग हो। संत पापा लियो ने कहा कि धर्म सभा इस भांति समारोह के लिए धार्मिक संगीत की अन्य शैलियों का परित्याग किए बिना ग्रेगोरियन गान को अत्यधिक महत्व देती है। यहाँ हम पाइप ऑर्गन पर दिए जाने वाले खास ध्यान को भी पाते हैं, जबकि अन्य दूसरे वाद्य यंत्रों की भी अनुमति है, इस शर्त पर कि वे यंत्र सुयोग्य हों या अपने में धार्मिक कार्यों की उपयोगिता हेतु सुव्यवस्थित किए जाते हों, जो ईश मंदिर के अनुरूप हों और जो सही अर्थ में विश्वासियों के लिए आध्यात्मिक लाभ प्रद हो। नवनीकरण की एक विषय वस्तु धर्म सभा के निकट है, जिसे हम संस्कृतिकरण स्वरूप पाते हैं, जो पवित्र संगीत को अपने में समाहित करता है। इस संदर्भ में विशेषकर विभिन्न संस्कृतियों में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। धर्म सभा उनके महत्वपूर्णता पर जोर देते हुए उन पर गंभीरता से विचार करने का आह्वान करती है, जैसे कि वे लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन का अंग बनते हैं। अतः वहीं दूसरी ओर एक धार्मिक मनोभावना हर किसी के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर जहाँ तक हो सके यह क्रियान्वयन के योग्य हो। हमें हर तरह से यह कोशिश करने की आवश्यकता है कि लोगों के पारंपरिक संगीत विद्यालयों और धर्म विधि दोनों क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाते हों। संत पापा लियो ने कहा कि धार्मिक संदर्भ में स्कोला कांतोरूम को एक खास भूमिका दी गई है। धर्म सभा प्रेरिताई हेतु वाद्य यंत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु निर्देश देती है, जिसमें विभिन्न संगीतों का उपयोग किया जाता हो और साथ ही विश्वासियों द्वारा गायन में सक्रिय सहभागिता ली जाती हो। यही कारण है कि संगीतज्ञ से इस बात की मांग की जाती है कि वह कलिसियाई संगीत का ज्ञान रखता हो और उस विरासत को कायम रखता हो जो उसे धर्म विधि के लिए नए गीतों को लिखने में प्रेरणा प्रदान करता हो, जबकि वह समकालीन संवेदनशीलता और विभिन्न परंपराओं का सम्मान करता हो, जिससे फैशन की कुरूपता से आराधना शुद्ध की जाती हो, अरुचिकर अभिव्यक्तियों, अप्रेरणादायक संगीतों के पदों से, जो समारोह हेतु उचित नहीं है, मुक्त किया जा सके, जिससे धार्मिक संरचनाओं को गरिमा और उत्कृष्टता की गारंटी प्राप्त हो। Sant Papa Leo ne kaha.
2: Per tutte queste ragioni i padri conciliari raccomandano di promuovere la formazione e la pratica della musica sacra.
1: Inhi karanon se dham sabha ke dharmacharyon ne is baat ko protsahit kiya ki nav shishyalayon, laghu gurukulon aur dharm sanghyon ke prashikshanalayon mein tatha kristiya sansthanon aur vidyalayon mein dharm vidhi ke geeton ka abhyas aur prashikshan diya jaye aur is baat ka dhyan rakha jaye ki sangeetajnon aur gayakon ka धर्म विधि के संबंध में उचित प्रशिक्षण दिया जाता हो। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, धर्म सभा के आचार्यों ने धर्म विधि के गीतों के संबंध में एक वृहद सम्मान था जो कलीसियाई एकता की एक निशानी थी। हम इस भांति अंतियोख के संत इग्नासियुस के सुंदर वचनों से इस धर्म शिक्षा माला की समाप्ति कर सकते हैं। आप में हर कोई एक गायक दल बने जिससे सहमति और सामंजस्य पूर्ण और एकता में ईश्वरीय स्वर को धारण कर आप यीशु ख्रिस्त के संग एक स्वर में पिता का गुण गान कर सकें, जिससे वे आपको सुन सकें और आपके अच्छे कार्यों में यह पहचान सकें कि आप उनके पुत्र के सदस्य हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने हंगरी में हुई दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया है। मरने वालों को ईश्वर की दया को सिपोर्ट किया और ईश्वर से उनके परिवारों को दिलासा प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेट्रो परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित ताज संदेश में पोप ने हंगरी में हुए एक दुखद सड़क हादसे के लिए दुख व्यक्त किया, जिसमें पोलिश तीर्थयात्रियों का एक दल मेजोगोरे से लौट रहा था। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ताज संदेश को उन धर्म प्रांतों के धर्माध्यक्षों को भेजा गया जहाँ से तीर्थयात्री आए थे। पोप ने इस खतरनाक घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त की है। पोप ने कहा, मैं उन्हें ईश्वर की दया को सपोर्ट करता हूँ और ईश्वर से उनके परिवारों को सांत्वना प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अंत में संत पापा ने सभी को चेस्तोकुआ की धन्या कुमारी मरियम को सपोर्ट किया और उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। दुर्घटना 15 और 16 अगस्त की रात को M3 मार्ग पर बुडापेस्ट से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में हुआ। बताया जा रहा है कि 59 लोगों को ले जा रही बस सड़क से उतरकर एक खाई में पलट गई। पोलिश और हंगेरियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने भी अपनी संवेदना जताई है और पीड़ितों एवं घायलों के लिए प्रार्थना करने का भरोसा दिया है। वियतनाम में लावांग की माता मरियम के सम्मान में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा चिंतन एवं प्रार्थना के साथ संपन्न हुई, जिसकी विषय वस्तु थी मरियम सुसमाचार के संदेश वाहक। पेरिस विदेशी मिशन के वियतनामी पुरोहित फादर लैंड्री वारेने ने कहा, लावांग वियतनाम में लूट के तीर्थस्थल जैसा है। उन्होंने उन तीर्थयात्राओं का जिक्र किया जो स्वर्गरोहण की खासियत को दिखाती हैं। 13 से 15 अगस्त तक वियतनाम के हुए महाधर्म प्रांत में लावांग की माता मरियम के राष्ट्रीय तीर्थस्थल में मरियम के पास मां के घर जाने की विषय वस्तु पर एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया था ताकि सांत्वना पा सकें और सच्चे शिष्य एवं मिशनरी बनना सीख सकें। फादर लैंड्री वारेने ने कहा, यह तीर्थस्थल वियतनामी लोगों की आस्था के केंद्र में है, जो खास तौर पर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कारणों से लावांग की माता मरियम के प्रति समर्पित है। लावांग वियतनाम में लूट के तीर्थस्थल जैसा है। उन्होंने उन बड़े तीर्थस्थलों का जिक्र किया जो धन्या कुमारी मरियम के स्वर्गरोहण की खासियत को दिखाती है। तीर्थयात्री उत्तरी, दक्षिणी और मध्य वियतनाम के साथ साथ विदेशों में वियतनामी समुदायों से भी आए थे। स्थानीय कलीसिया के अनुमान अनुसार इस साल तीर्थयात्रियों की संख्या 2 लाख से ज्यादा थी। फादर फ्रांसिस ने लोगों के विश्वास पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हर कोई उस बात पर विश्वास करता है जो मरियम ने 1789 में हमारे पूर्वजों से कही थी कि वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगी। हम मानते हैं कि हमारी माँ देश के लिए, वियतनाम की कलीसिया के लिए और शांति के लिए हमारी प्रार्थनाएं सुनती हैं। वे बताते हैं कि उनकी भक्ति ख्रिस्त्याग, वापसी का संस्कार, क्रूस रास्ता और करुणा की पौत्र घड़ी में भाग लेने जैसे तरीकों से व्यक्त होती है। वे कहते हैं, विश्वासों को लगता है कि वे माँ के दिल में हैं, उनके आंचल तले मरियम उनकी शरण है। इसमें एक मिशनरी पहलू भी है। वे कहते हैं कि लोग मरियम के आदर्शों का अनुसरण करते हुए प्रभु और उनके प्यार को दूसरों तक पहुंचाना सीखते हैं। लावांग की माता मरियम के प्रति भक्ति की शुरुआत 1798 में हुई, जब वियतनाम के इतिहास में ख्रिस्तियों पर अत्याचार का सबसे बुरा दौर था। सम्राट कान थिंग ने गिरजाघरों को नष्ट करने और कैथलिकों को सताने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्हें विदेशी धर्म के अनुयायी माना जाता था। कई लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा और उन्होंने लावांग के घने जंगल में शरण ली, जहां उन्होंने भूख, बीमारी और ठंड झेली और उन्हें डर था कि उन्हें ढूंढ कर मार दिया जाएगा। शरणार्थी हर शाम एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते, आग जलाते और रोजरी माला विनती करते थे। रात की इन्हीं प्रार्थनाओं के दौरान एक दिन रोशनी में लिपटी एक महिला दिखाई दी, जो पारंपरिक वियतनामी कपड़े पहने हुए थी और उनके साथ 2 स्वर्गदूत भी थे। उनका संदेश सबसे ज्यादा दिलासा देने वाला था, मेरे बच्चों दृढ़ बनो और विश्वास रखो, मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। यह खास बात है कि मरियम बिल्कुल एक वियतनामी महिला की मुखाकृति और कपड़ों में दिखाई दी।
उनकी इस छवि को स्थानीय कलीसिया ने खासकर 20वीं सदी के अंत में बड़े पैमाने पर फैलाया। विश्वास और पहचान के बीच एक गहरा संबंध दिखाती है। सदियों बाद आज धर्माध्यक्ष इस बात को मानते हैं कि जब कैथोलिकों पर विदेशी धर्म से जुड़े होने का आरोप लगाया गया था, लावांग इस बात की गवाही देती हैं कि पूरी तरह कैथोलिक और साथ ही पूरी तरह वियतनामी होना भी संभव है। आज भी तीर्थयात्री इस याद को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। वे बरगद के पेड़ों की छांव में टेंट में सोते हैं, रोजरी माला विनती करते और उत्सव के दौरान नाटकों के जरिए 1798 के दिव्य दर्शन की कहानी सुनाते हैं। पोप लियो 14वें ने सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर में एसोसिएट प्रोफेसर कैरन रोड्रिगस को वैटिकन के समग्र मानव विकास विभाग में सलाहकार के रूप में चुना है। नियुक्ति की घोषणा 18 अगस्त को हुई। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित वैटिकन विभाग के सलाहकार के रूप में कैरन रोड्रिगस के साथ कई अन्य सदस्यों की नियुक्ति हुई है। जैसा कि प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम में कहा गया है, रोमी परमाध्यक्ष कार्यालय के विभागों में सलाहकारों की नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए की जाती है। वे खासकर अध्ययन की जरूरत वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए उपयोगी राय एवं सुझाव देते हैं। बार्सिलोना में ICOF हॉस्पिटल क्लिनिक की एक नर्स एलिजाबेथ अजेरमी ने कस्तेल गंदोल्फो में पोप लियो से बात की और उन्हें लर्निंग टू डाई इन ऑर्डर टू लिव नाम की किताब भेंट की। यह किताब उनके भाई जेबियर अजेरमी की कहानी बताती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र

0: चीतोमृत अमृतों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,

0: क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर
2: और सिस्टर अनुग्रह मिंज।
0: पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

जब शासक तुम पर अप्रसन्न हो तो अपना काम मत छोड़ो, क्योंकि धैर्य बहुत सी गलतियों से बचाता है। मैंने पृथ्वी पर एक बुराई देखी है, एक ऐसी गलती जिसे शासक किया करते हैं। मूर्खों की नियुक्ति बड़े बड़े पदों पर होती है और धनियों की छोटे छोटे पदों पर। मैंने दासों को घोड़ों पर यात्रा करते और शासकों को दासों जैसा पैदल जाते देखा है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 4 से लेकर 7 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस अध्याय का मुख्य संदेश समझदारी और मूर्खता के बीच एक व्यावहारिक अंतर दर्शाना है। थोड़ी सी मूर्खता की नुकसान पहुंचाने वाली ताकत, तैयारी की अहमियत और अपने शब्दों पर काबू रखने की जरूरत पर इस अध्याय में बल दिया गया है। यह अध्याय प्रज्ञा, बुद्धि और समझदारी के शांत और प्रायः नजरअंदाज किए जाने वाले लाभों और मूर्खता के विनाशकारी स्वभाव के बीच अंतर दर्शाता है। उपदेशक ने यह कहना चाहा है कि मनुष्य का आंतरिक स्वभाव उसे सुरक्षा या बर्बादी की ओर ले जा सकता है। थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती है, जबकि समझदारी भरी सोच स्वाभाविक रूप से लाभदायक, हितकारी और सुरक्षित विकल्पों की ओर ले जाती है। अस्तु, प्रज्ञा की कभी उपेक्षा न की जाए, बल्कि उसे जीवन के अनमोल धन की तरह संचित रखा जाए। इस अध्याय के 4थे पद में उपदेशक की यही सलाह है कि जब आप किसी शासक, मालिक या नियोजक के साथ परेशानी में हों तो घबराने या नाराज होने से बेहतर है कि आप खुद पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध को जाहिर न होने दें और शांत रहें, क्योंकि धैर्यपूर्वक शांत रहने से किसी बुरे झगड़े को और बिगड़ने से रोका जा सकता है। उपदेशक स्मरण दिलाता है कि इस जीवन में सब कुछ सही नहीं होता, सब कुछ न्यायपूर्ण नहीं होता, तथापि प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रज्ञा और विवेक का इस्तेमाल कर अन्याय के आगे झुके नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करे। तदुपरांत उपदेशक यह भी याद दिलाता है कि खराब नेतृत्व की वजह से कार्यस्थलों पर हमने इस बात का अनुभव किया है कि मूर्ख और बेवकूफ या नाकाबिल लोगों को ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठा दिया जाता है, जबकि बुद्धिसम्मत, समझदार और काबिल तथा योग्य लोगों को नीचे के पद, निम्न पद दिए जाते हैं। यह सब हमारी खामियों के कारण नहीं, अपितु अन्यायपूर्ण शासकों और उनके नेतृत्व की वजह से होता है। इसलिए व्यक्ति हर पल अन्याय के विरुद्ध सावधान रहे और सदैव सत्य एवं न्याय के रास्ते पर चलकर अपना जीवन सुखमय बनाए।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 8 से लेकर 11 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। ये पद इस प्रकार हैं: जो गड्ढा खोदता है वह उसमें गिर सकता है, जो दीवार में सेंध लगाता उसे सांप काट सकता है, जो खदान से पत्थर निकालता उसे चोट लग सकती है, जो लकड़ियां चीरता उसे उनसे खतरा रहता है। यदि तुम भोतरे कुल्हाड़े की धार नहीं पजाते तो दुगना परिश्रम करना पड़ेगा। बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। यदि मंत्र सुनने से पहले ही सांप काट ले तो सपेरा क्या कर सकता है? श्रोताओं, वस्तुतः यहां उपदेशक हम सबसे सदैव सजग, सचेत और सक्रिय रहने का आग्रह करता है। यदि हम सजग रहे, सचेत रहे और सक्रिय रहे तो सावधानी पूर्वक अपने कामों का संपादन करेंगे और हमारे प्रति कोई अनहोनी नहीं होगी, हमें किसी तरह की हानि नहीं पहुंचेगी। जबकि यदि हम लापरवाह रहे तो काम हर तरह से बिगड़ सकता है। गड्ढा खोदते समय हम खुद उसमें गिर सकते हैं, दीवार में सेंध लगाते समय सतर्क न रहे तो सांप दीवार के भीतर से निकलकर हमें काट सकता है, खदान से पत्थर निकालते समय भी यदि चौकस न रहे तो चोट लग सकती है, लकड़ियां चीरने वाले को भी इसी तरह सावधान रहना पड़ता है, और यदि कुल्हाड़े की धार नहीं करेंगे तो बहुत अधिक मेहनत के बाद भी हमारा काम पूरा नहीं हो सकेगा और हम केवल थकावट और थकावट ही महसूस करेंगे। श्रोताओं, ये सब व्यावहारिक सी बातें हैं, स्वाभाविक सी बातें हैं, जिनके द्वारा उपदेशक ने हमें सदैव चौकस रहने के लिए कहा है। वह कहता है, बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। यदि व्यक्ति सफल होना चाहे तो उसे प्रज्ञा, विवेक और सूझबूझ के साथ अपने सभी कार्यों को निपटाना चाहिए, अन्यथा वह विफल और असंतुष्ट ही रहेगा। सुलेमान ने ऐसे कई व्यक्तियों के उदाहरण पेश किए हैं जिन्होंने गलत या बेवकूफी भरे काम किए और फिर उसकी वजह से दुख उठाया। सुलेमान चाहते थे कि मनुष्य को यह ज्ञान हो जाए कि यदि वह गलत या बेवकूफी भरे काम करेगा तो उनकी वजह से उसे अवश्य ही दुख उठाना पड़ेगा। जो कोई भी दीवार तोड़ेगा उसे सांप काटेगा। उपदेशक के इस विचार को श्रोताओं, अलेक्जेंडर मैकलारेन ने आध्यात्मिक मोड़ प्रदान कर कहा है कि जो कोई संयम की दीवार गिराएगा उसे सांप काटेगा। काटते हाथ, टूटा हुआ शरीर, बर्बाद हुई इज्जत, खत्म हुई ख्वाहिशें, बर्बाद हुई जिंदगी, गरीबी, शर्म और कमजोर इच्छा शक्ति, मौत, ये सब वो सांप हैं जो कई मामलों में नियम तोड़ने वाले को काटते हैं। और F.B. मेयर ने उपदेशक द्वारा कुल्हाड़े की तेज धार की तुलना व्यक्ति की शक्ति से की है। जब बहुत अधिक परिश्रम के बाद व्यक्ति थक जाता है तब मानो उसके शरीर रूपी कुल्हाड़े में धार नहीं रह जाती, और ऐसे समय में प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख होकर शक्ति और साहस की प्रार्थना करना जरूरी बन जाता है। विश्वास कीजिए, एक बेजान धार और कम ताकत के मुकाबले एक तेज धार और ईश्वर की कृपा एवं शक्ति से अधिक काम होता है। आगे 10वें अध्याय के 11वें पद में उपदेशक कहता है, बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। यदि मंत्र सुनने से पहले सांप काट ले तो सपेरा क्या कर सकता है? श्रोताओं, सांप को जब लगे कि उसका जीवन खतरे में है तो वह व्यक्तियों को काट लेता है, और सपेरा यही प्रयास करता है कि उसके मंत्र से सांप मुक्त हो जाए और किसी को काटे नहीं। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को भी हर पल अपने जीवन पर खतरा बना हुआ नजर आता है और इसीलिए वह अनर्गल बका करता है। हर क्षण कुछ न कुछ बोलने वाला मूर्ख भी काटने वाले सांप की तरह ही है। उसके मूर्खतापूर्ण शब्द ही उसे निगल लेते हैं या उसका अनर्थ कर देते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहता वह उतना ही बोलता है जितना जरूरी होता है। उसके मुख से निकलने वाले शब्द अर्थपूर्ण और सामने वाले के लिए लाभकारी, हितकारी होते हैं। इसीलिए उपदेशक कहता है, बुद्धिमान बनो,
क्योंकि बुद्धिमानी ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा से अपना जीवन यापन करता है, जो ईश नियमों का पालन कर अपने दायित्वों को भली प्रकार निभाता है, वही धन्य है, वही ईश कृपा का पात्र बनता है।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। युद्ध के हथियार की जगह शांति के ईश्वर हमें ठीक करने, मेल मिलाप करने और प्यार की सभ्यता बनाने की ताकत देते हैं। संत पापा लियो 14वें ने यह बात सृष्टि की देखभाल के लिए प्रार्थना के 10वें विश्व दिवस पर अपने संदेश में कही, जिसे वाटिकन प्रेस ऑफिस ने आज गुरुवार को प्रकाशित किया। कलीसिया 1 सितंबर को सृष्टि की देखभाल के लिए प्रार्थना का 10वां विश्व दिवस मना रही है और इस साल की थीम है, वे अपनी तलवारों को हाल के फाल और अपने भालों को हसिया बना लेंगे। इसाया अध्याय 2 पद संख्या 4। संत पापा ने कहा, हमारे प्रभु येसु मसीह इसलिए आए ताकि जीवन मिले और वह भी भरपूर मात्रा में। जीवन का यह उपहार शिष्यों के तौर पर हमारे मिशन और प्यार की सभ्यता बनाने की हमारे साझा बुलावे के दिल में है। जब हम दुनिया की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस मना रहे हैं, तो हम एक बार फिर जीवन के उपहार पर सोचने और उसे बनाए रखने वाली धरती की कद्र करने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए ये हमारे सृष्टिकर्ता की प्रशंसा करने का ठोस तरीका है। आज हम कई मुश्किलें और इंसानों की बहुत तकलीफें देख रहे हैं। साथ ही ऐसा लगता है कि दुनिया के तालमेल वाले संतुलन में रुकावट तेजी से बढ़ रही है। ये घटनाएं एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक घायल दुनिया से ठीक होने और शांति के लिए पुकार है। जीवन दाता ईश्वर जो येसु मसीह में प्रकट हुए हैं, ऐसी शांति देते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति ना तो ऊपरी है और ना ही कुछ समय के लिए। यह मसीह के हमेशा रहने वाले प्यार और हर इंसान के लिए उनकी देखभाल से आती है। फिर भी शांति की यह प्रतिज्ञा दुनिया के कई हिस्सों में हम जो सच्चाई देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है। आगे संत पापा ने कहा, युद्ध ऐसे जख्म छोड़ देता है जो लड़ाई के मैदान से कहीं आगे तक जाते हैं। यह जाने लेता है, परिवार को तोड़ देता है और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने को मजबूर कर देता है, जिससे डर, अन्याय और बंटवारा और गहरा हो जाता है। युद्ध अपने पीछे सामाजिक और पारिस्थितिकीय तबाही भी छोड़ जाता है जो पीढ़ियों तक बनी रहती है। संत पापा ने कहा, तलवारों को पीटकर हाल के फाल बनाने का बुलावा सिर्फ देशों के लिए एक नज़रिया नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए एक बुलावा है। यह हमें नुकसान को जिंदगी में बदलने के लिए बुलाता है। फिर भी यह बदलाव सिर्फ बाहरी बदलाव से नहीं हो सकता, इसके लिए ईश्वर की कृपा के सहयोग द्वारा एक निजी और सामूहिक परिवर्तन जरूरी है। ईश्वर के पास लौटना, जो हमारी इच्छाओं को फिर से व्यवस्थित करेंगे, हमारे जख्मों को भरेंगे और हमें अच्छाई में बढ़ने में मदद करेंगे। अंत में संत पापा ने प्रार्थना की कि ईश्वर हमें अपने इस रास्ते पर चलने की हिम्मत दें, ताकि हमारे समय में तलवारें सच में हल्के फाल बन सकें और सुसमाचार का वादा हमारी दुनिया में और गहरी जड़ें जमा सके और ख्रीस्त की शांति पूरी दुनिया पर राज कर सके। उधर रातों रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक नए हमले का ऐलान किया। इसे किसी भी देश के खिलाफ अब तक का सबसे खतरनाक आर्थिक कार्रवाई, एक आर्थिक दिवस और अनोखा अकेलापन कहा। ट्रंप का यह भी दावा है कि तेहरान ने वह मौका गंवा दिया जो वाशिंगटन ने समझौते तक पहुंचने के लिए दिया था, और उन्होंने किसी भी ऐसे देश के खिलाफ बहुत बड़े आर्थिक नतीजे की धमकी दी जो वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को सहायता देने की अनुमति देता है। ट्रंप ने कहा, हमें अपने सभी साथियों को ईरानी खतरों को अलग अलग करने और हराने के लिए अमेरिका के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, और दोहराया कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका की घोषणा को फेल होने वाली पॉलिसी का जारी रहना बताया
और वाशिंगटन पर आर्थिक आतंक का आरोप लगाया जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और दूसरे देशों की संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है। ईरानी मीडिया ने भी ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इसे फेल मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन का नया वर्जन बताया, जबकि फार्स ने ईरान के संभावित पतन के अमेरिका के अनुमानों को भ्रम कहा। आर्थिक दबाव के साथ मिलिट्री दबाव भी जुड़ा हुआ है। क्रांतिकारी रक्षकों ने चेतावनी दी कि किसी नए झगड़े की स्थिति में तेहरान पहले से ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करेगा, जिससे नई पीढ़ी के वारहेड और ज्यादा सटीक और रेंज वाली मिसाइलें होंगी। इस बीच जमीन पर होर्मुज की खाड़ी लड़ाई का एक मुख्य केंद्र बनी हुई है। यह रास्ता जिससे युद्ध से पहले दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा हाइड्रोकार्बन गुजरता था, लगभग पूरी तरह से बंद है। 28 फरवरी को शुरू हुए इस झगड़े की मिलिट्री कीमत बहुत ज्यादा है। पेंटागन के ताजा डेटा के अनुसार लड़ाई शुरुआत होने के बाद से 757 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और 18 मारे गए हैं। उधर आज रात यूक्रेन की राजधानी कीव में 12 लोग और पास के इलाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि करीब 40 लोग घायल हो गए। एक ऊंची इमारत की ऊपरी मंजिल तबाह हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिखा, रूसी हमलों से प्रभावित जगहों पर बचाव टीमें पूरी रात काम कर रही हैं। यह एक बहुत बड़ा हमला था। रूस लंबे समय से तैयारी कर रहा था। अलग अलग जगह की बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था, जिसका मकसद रिहायशी इमारतों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुँचाना था। इस हमले का असर देश के दूसरे इलाकों में भी पड़ा। ओडेसा इलाके में रूसी ड्रोन ने मालदोवा के साथ एक बॉर्डर क्रॉसिंग पर हमला किया, जबकि चेरनीहाइव इलाके में गैस संरचनाओं को निशाना बनाया गया। एक बाल चिकित्सालय और एक स्कूल भी हमले के शिकार हुए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर
2: और सिस्टर अनुग्रह मिंज।
0: पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है।

जब शासक तुम पर अप्रसन्न हो तो अपना काम मत छोड़ो, क्योंकि धैर्य बहुत सी गलतियों से बचाता है। मैंने पृथ्वी पर एक बुराई देखी है, एक ऐसी गलती जिसे शासक किया करते हैं। मूर्खों की नियुक्ति बड़े बड़े पदों पर होती है और धनियों की छोटे छोटे पदों पर। मैंने दासों को घोड़ों पर यात्रा करते और शासकों को दासों जैसा पैदल जाते देखा है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 4 से लेकर 7 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस अध्याय का मुख्य संदेश समझदारी और मूर्खता के बीच एक व्यावहारिक अंतर दर्शाना है। थोड़ी सी मूर्खता की नुकसान पहुंचाने वाली ताकत, तैयारी की अहमियत और अपने शब्दों पर काबू रखने की जरूरत पर इस अध्याय में बल दिया गया है। यह अध्याय प्रज्ञा, बुद्धि और समझदारी के शांत और प्रायः नजरअंदाज किए जाने वाले लाभों और मूर्खता के विनाशकारी स्वभाव के बीच अंतर दर्शाता है। उपदेशक ने यह कहना चाहा है कि मनुष्य का आंतरिक स्वभाव उसे सुरक्षा या बर्बादी की ओर ले जा सकता है। थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती है, जबकि समझदारी भरी सोच स्वाभाविक रूप से लाभदायक, हितकारी और सुरक्षित विकल्पों की ओर ले जाती है। अस्तु, प्रज्ञा की कभी उपेक्षा न की जाए, बल्कि उसे जीवन के अनमोल धन की तरह संचित रखा जाए। इस अध्याय के 4थे पद में उपदेशक की यही सलाह है कि जब आप किसी शासक, मालिक या नियोजक के साथ परेशानी में हों, तो घबराने या नाराज होने से बेहतर है कि आप खुद पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध को जाहिर न होने दें और शांत रहें, क्योंकि धैर्यपूर्वक शांत रहने से किसी बुरे झगड़े को और बिगड़ने से रोका जा सकता है। उपदेशक स्मरण दिलाता है कि इस जीवन में सब कुछ सही नहीं होता, सब कुछ न्यायपूर्ण नहीं होता, तथापि प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रज्ञा और विवेक का इस्तेमाल कर अन्याय के आगे झुके नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करे। तदुपरांत उपदेशक यह भी याद दिलाता है कि खराब नेतृत्व की वजह से कार्यस्थलों पर हमने इस बात का अनुभव किया है कि मूर्ख और बेवकूफ या नाकाबिल लोगों को ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठा दिया जाता है, जबकि बुद्धि सम्मत, समझदार और काबिल तथा योग्य लोगों को नीचे के पद, निम्न पद दिए जाते हैं। यह सब हमारी खामियों के कारण नहीं, अपितु अन्यायपूर्ण शासकों और उनके नेतृत्व की वजह से होता है। इसलिए व्यक्ति हर पल अन्याय के विरुद्ध सावधान रहे और सदैव सत्य एवं न्याय के रास्ते पर चलकर अपना जीवन सुखमय बनाए।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 8 से लेकर 11 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। ये पद इस प्रकार हैं। जो गड्ढा खोदता है वह उसमें गिर सकता है, जो दीवार में सेंध लगाता उसे सांप काट सकता है, जो खदान से पत्थर निकालता उसे चोट लग सकती है, जो लकड़ियां चीरता उसे उनसे खतरा रहता है। यदि तुम भोतरे कुल्हाड़े की धार नहीं पजाते तो दुगना परिश्रम करना पड़ेगा। बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। यदि मंत्र सुनने से पहले ही सांप काट ले तो सपेरा क्या कर सकता है। श्रोताओं, वस्तुतः यहां उपदेशक हम सबसे सदैव सजग, सचेत और सक्रिय रहने का आग्रह करता है। यदि हम सजग रहे, सचेत रहे और सक्रिय रहे तो सावधानी पूर्वक अपने कामों का संपादन करेंगे और हमारे प्रति कोई अनहोनी नहीं होगी, हमें किसी तरह की हानि नहीं पहुंचेगी। जबकि यदि हम लापरवाह रहे तो काम हर तरह से बिगड़ सकता है। गड्ढा खोदते समय हम खुद उसमें गिर सकते हैं। दीवार में सेंध लगाते समय सतर्क न रहे तो सांप दीवार के भीतर से निकलकर हमें काट सकता है। खदान से पत्थर निकालते समय भी यदि चौकस न रहे तो चोट लग सकती है। लकड़ियां चीरने वाले को भी इसी तरह सावधान रहना पड़ता है। और यदि कुल्हाड़े की धार नहीं करेंगे तो बहुत अधिक मेहनत के बाद भी हमारा काम पूरा नहीं हो सकेगा और हम केवल थकावट और थकावट ही महसूस करेंगे। श्रोताओं, ये सब व्यावहारिक सी बातें हैं, स्वाभाविक सी बातें हैं, जिनके द्वारा उपदेशक ने हमें सदैव चौकस रहने के लिए कहा है। वह कहता है, बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। यदि व्यक्ति सफल होना चाहे तो उसे प्रज्ञा, विवेक और सूझबूझ के साथ अपने सभी कार्यों को निपटाना चाहिए, अन्यथा वह विफल और असंतुष्ट ही रहेगा। सुलेमान ने ऐसे कई व्यक्तियों के उदाहरण पेश किए हैं जिन्होंने गलत या बेवकूफी भरे काम किए और फिर उसकी वजह से दुख उठाया। सुलेमान चाहते थे कि मनुष्य को यह ज्ञान हो जाए कि यदि वह गलत या बेवकूफी भरे काम करेगा तो उनकी वजह से उसे अवश्य ही दुख उठाना पड़ेगा। जो कोई भी दीवार तोड़ेगा उसे सांप काटेगा। उपदेशक के इस विचार को श्रोताओं, अलेक्जेंडर मैकलारेन ने आध्यात्मिक मोड़ प्रदान कर कहा है कि जो कोई संयम की दीवार गिराएगा उसे सांप काटेगा। काटते हाथ, टूटा हुआ शरीर, बर्बाद हुई इज्जत, खत्म हुई ख्वाहिशें, बर्बाद हुई जिंदगी, गरीबी, शर्म और कमजोर इच्छा शक्ति, मौत, ये सब वो सांप हैं जो कई मामलों में नियम तोड़ने वाले को काटते हैं। और F.B. मेयर ने उपदेशक द्वारा कुल्हाड़े की तेज धार की तुलना व्यक्ति की शक्ति से की है। जब बहुत अधिक परिश्रम के बाद व्यक्ति थक जाता है तब मानो उसके शरीर रूपी कुल्हाड़े में धार नहीं रह जाती, और ऐसे समय में प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख होकर शक्ति और साहस की प्रार्थना करना जरूरी बन जाता है। विश्वास कीजिए, एक बेजान धार और कम ताकत के मुकाबले एक तेज धार और ईश्वर की कृपा एवं शक्ति से अधिक काम होता है। आगे 10वें अध्याय के 11वें पद में उपदेशक कहता है, बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। यदि मंत्र सुनने से पहले सांप काट ले तो सपेरा क्या कर सकता है। श्रोताओं, सांप को जब लगे कि उसका जीवन खतरे में है तो वो व्यक्तियों को काट लेता है, और सपेरा यही प्रयास करता है कि उसके मंत्र से सांप मुक्त हो जाए और किसी को काटे नहीं। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को भी हर पल अपने जीवन पर खतरा बना हुआ नजर आता है और इसीलिए वह अनर्गल बका करता है। हर क्षण कुछ न कुछ बोलने वाला मूर्ख भी काटने वाले सांप की तरह ही है। उसके मूर्खतापूर्ण शब्द ही उसे निगल लेते हैं या उसका अनर्थ कर देते हैं। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहता वह उतना ही बोलता है जितना जरूरी होता है। उसके मुख से निकलने वाले शब्द अर्थपूर्ण और सामने वाले के लिए लाभकारी, हितकारी होते हैं। इसीलिए उपदेशक कहता है, बुद्धिमान बनो,
क्योंकि बुद्धिमानी ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा से अपना जीवन यापन करता है, जो ईश नियमों का पालन कर अपने दायित्वों को भली प्रकार निभाता है, वही धन्य है, वही ईश कृपा का पात्र बनता है।

मिलाप करने और प्यार की सभ्यता बनाने की ताकत देते हैं। संत पापा लियो 14वें ने यह बात सृष्टि की देखभाल के लिए प्रार्थना के 10वें विश्व दिवस पर अपने संदेश में कही, जिसे वाटिकन प्रेस ऑफिस ने आज गुरुवार को प्रकाशित किया। कलीसिया 1 सितंबर को सृष्टि की देखभाल के लिए प्रार्थना का 10वां विश्व दिवस मना रही है और इस साल की थीम है, वे अपनी तलवारों को हाल के फाल और अपने भालों को हसिया बना लेंगे। इसाया अध्याय 2 पद संख्या 4। संत पापा ने कहा, हमारे प्रभु येसु मसीह इसलिए आए ताकि जीवन मिले और वह भी भरपूर मात्रा में। जीवन का यह उपहार शिष्यों के तौर पर हमारे मिशन और प्यार की सभ्यता बनाने की हमारे साझा बुलावे के दिल में है। जब हम दुनिया की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस मना रहे हैं, तो हम एक बार फिर जीवन के उपहार पर सोचने और उसे बनाए रखने वाली धरती की कद्र करने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए ये हमारे सृष्टिकर्ता की प्रशंसा करने का ठोस तरीका है। आज हम कई मुश्किलें और इंसानों की बहुत तकलीफें देख रहे हैं, साथ ही ऐसा लगता है कि दुनिया के तालमेल वाले संतुलन में रुकावट तेजी से बढ़ रही है। ये घटनाएं एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक घायल दुनिया से ठीक होने और शांति के लिए पुकार है। जीवन दाता ईश्वर जो येसु मसीह में प्रकट हुए हैं, ऐसी शांति देते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति ना तो ऊपरी है और ना ही कुछ समय के लिए। यह मसीह के हमेशा रहने वाले प्यार और हर इंसान के लिए उनकी देखभाल से आती है। फिर भी शांति की यह प्रतिज्ञा दुनिया के कई हिस्सों में हम जो सच्चाई देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है। आगे संत पापा ने कहा, युद्ध ऐसे जख्म छोड़ देता है जो लड़ाई के मैदान से कहीं आगे तक जाते हैं। यह जाने लेता है, परिवार को तोड़ देता है और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने को मजबूर कर देता है, जिससे डर, अन्याय और बंटवारा और गहरा हो जाता है। युद्ध अपने पीछे सामाजिक और पारिस्थितिकीय तबाही भी छोड़ जाता है जो पीढ़ियों तक बनी रहती है। संत पापा ने कहा, तलवारों को पीटकर हाल के फाल बनाने का बुलावा सिर्फ देशों के लिए एक नजरिया नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए एक बुलावा है। यह हमें नुकसान को जिंदगी में बदलने के लिए बुलाता है। फिर भी यह बदलाव सिर्फ बाहरी बदलाव से नहीं हो सकता, इसके लिए ईश्वर की कृपा के सहयोग द्वारा एक निजी और सामूहिक परिवर्तन जरूरी है। ईश्वर के पास लौटना, जो हमारी इच्छाओं को फिर से व्यवस्थित करेंगे, हमारे जख्मों को भरेंगे और हमें अच्छाई में बढ़ने में मदद करेंगे। अंत में संत पापा ने प्रार्थना की कि ईश्वर हमें अपने इस रास्ते पर चलने की हिम्मत दें, ताकि हमारे समय में तलवारें सच में हल्के फाल बन सकें और सुसमाचार का वादा हमारी दुनिया में और गहरी जड़ें जमा सके और ख्रीस्त की शांति पूरी दुनिया पर राज कर सके। उधर रातों रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक नए हमले का ऐलान किया। इसे किसी भी देश के खिलाफ अब तक का सबसे खतरनाक आर्थिक कार्रवाई, एक आर्थिक दिवस और अनोखा अकेलापन कहा। ट्रंप का यह भी दावा है कि तेहरान ने वह मौका गंवा दिया जो वाशिंगटन ने समझौते तक पहुंचने के लिए दिया था, और उन्होंने किसी भी ऐसे देश के खिलाफ बहुत बड़े आर्थिक नतीजे की धमकी दी जो वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को सहायता देने की अनुमति देता है। ट्रंप ने कहा, हमें अपने सभी साथियों को ईरानी खतरों को अलग अलग करने और हराने के लिए अमेरिका के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, और दोहराया कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका की घोषणा को फेल होने वाली पॉलिसी का जारी रहना बताया और वाशिंगटन पर आर्थिक आतंक का आरोप लगाया जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और दूसरे देशों की संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है। ईरानी मीडिया ने भी ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इसे फेल मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन का नया वर्जन बताया, जबकि फार्स ने ईरान के संभावित पतन के अमेरिका के अनुमानों को भ्रम कहा। आर्थिक दबाव के साथ मिलिट्री दबाव भी जुड़ा हुआ है।
क्रांतिकारी

पेंगोंग ने चेतावनी दी कि किसी नए झगड़े की स्थिति में तेहरान पहले से ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करेगा, जिससे नई पीढ़ी के वारहेड और ज्यादा सटीक और रेंज वाली मिसाइलें होंगी। इस बीच जमीन पर होर्मुज की खाड़ी लड़ाई का एक मुख्य केंद्र बनी हुई है। यह रास्ता, जिससे युद्ध से पहले दुनिया का लगभग पांचवा हिस्सा हाइड्रोकार्बन गुजरता था, लगभग पूरी तरह से बंद है। 28 फरवरी को शुरू हुए इस झगड़े की मिलिट्री कीमत बहुत ज्यादा है। पेंटागन के ताजा डेटा के अनुसार लड़ाई शुरुआत होने के बाद से 757 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और 18 मारे गए हैं। उधर आज रात यूक्रेन की राजधानी कीव में 12 लोग और पास के इलाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि करीब 40 लोग घायल हो गए। एक ऊंची इमारत की ऊपरी मंजिल तबाह हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिखा, रूसी हमलों से प्रभावित जगहों पर बचाव टीमें पूरी रात काम कर रही हैं। यह एक बहुत बड़ा हमला था। रूस लंबे समय से तैयारी कर रहा था। अलग अलग जगह की बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था, जिसका मकसद रिहायशी इमारतों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुँचाना था। इस हमले का असर देश के दूसरे इलाकों में भी पड़ा। ओडेसा इलाके में रूसी ड्रोन ने मालदोवा के साथ एक बॉर्डर क्रॉसिंग पर हमला किया, जबकि चेरनिहाइव इलाके में गैस संरचनाओं को निशाना बनाया गया। एक बाल चिकित्सालय और एक स्कूल भी हमले के शिकार हुए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।